0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
2: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
3: Good morning. It is past 6 a.m., which means only one thing. It's not just time to start, but kickstart your day. This is the perfect way to recharge your batteries. It is called The Big Breakfast with me, Sid. Is शो में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए टू गेट अप एंड रनिंग ऑन द वे टू वर्क अप अंटिल 10 AM। मेरा साथ निभाइए, मैं आपके साथ, यानी कि आपका मूड अगर अच्छा है तो और अच्छा कर देंगे, खराब है तो उससे अच्छा कर देंगे। दिस इज ऑल्सो द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट। इफ यू गॉट रिक्वेस्ट, देयर इज वन नंबर यू गॉट कीप इन माइंड, 800-1062। आज ड्राइव करते हुए हवा थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही थी, 28-29 degrees Celsius ऑन माई डैशबोर्ड। We'll talk about the weather and so much more. This is Big 106.2, a part of the Funny Share Network. Good morning.

0: 6:11 मुंडा सोना हूं मैं, दिलजीत दोसांझ की आवाज, निकिता गांधी. समटाइम्स दी सिंगर्स दे सिंग एंड यू जस्ट कांट रिकॉग्नाइज. ओ दिलजीत दोसांझ.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: यस, स्पीकिंग अबाउट दिलजीत, दैट इज गोना बी द रिलीज फॉर दिस वीक. इज इट अ बिट टू अर्ली टू टॉक अबाउट बॉलीवुड? या इट इज नेवर टू अर्ली टू टॉक अबाउट बॉलीवुड, बट बॉलीवुड का हो या कोई पर्सनल एल्बम, प्राइवेट एल्बम, सॉन्ग दैट यू लव, दिस इज द आर टू मेक दैट रिक्वेस्ट. बिकॉज हम लोग म्यूजिक के कंधे का सपोर्ट लेते हैं टू वेक अप प्रॉपरली, फुल्ली या टोटली एवरी डे इन द मॉर्निंग. 6 to 7 इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर. एंड कौन सा वो गाना है दैट रिचार्जेस योर बैटरीज, दैट इज द क्वेश्चन. आंसर करने के लिए 800-1062 पे कॉल करो. आई एम गोना प्ले अवर सॉन्ग दैट यू माइट लव.
2: जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मेनू
0: मार सुट्टिया, जैसी बी,
2: जिने मेरा दिल
0: लुटिया, कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल.
2: जिने मेनू मार सुट्टिया, लक बदला बलोरी ओदे नैन नैन.
0: Keep it locked. This is Big 106.2, a part of the Fun Asia Network.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own, sedan, SUV, luxury or commercial, pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
1: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 6:22 ऑन दिस वेंसडे की सुबह 10th ऑफ जून, 31 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, फील्स लाइक 36, नाइस सनी हॉट स्टार्ट टू दिस वेंसडे मॉर्निंग, हाइज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: बॉयफ्रेंड स्टेज से आगे निकल चुके हैं, निखिल ने शादी कर ली है यार।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: निखिल, गुड मॉर्निंग, कैसे कहे भाव? लेकिन आजकल इनका जो आवाज से आपको लग रहा होगा, मूड थोड़ा सा खराब है। निखिल, क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सर, ऐसे घर की याद आ गई तो ऐसे आपको आपको याद किया, तो आप मेरे लिए गाना प्ले करेंगे, इसके लिए मैंने आपको फोन।
0: नहीं, आपने कहा कि आपकी वाइफ से आप कुछ जुदाई चल रही है आपकी?
2: नहीं, जुदाई मतलब दो साल से गया नहीं हूँ इंडिया, तो याद आ गई इसके लिए। याद यहाँ से निकालू, यहाँ से गाने से निकालू।
0: चलो वेरी गुड यार, तो आपकी वाइफ भी मुंबई में है, मतलब यूर ऑल अलोन आउट
2: हियर? बच्चे मुंबई में है।
0: हाँ, एंड इट्स बीन 2 इयर्स, दो साल से आप घर वापस नहीं गए?
2: नहीं गए सर, अभी छुट्टी अभी अगले साल मिलेगी, मे बी अगस्त में छुट्टी मिलेगी सर।
0: वाओ, कितना मेहनत करते हैं लोग यार, कितना इट इज इनक्रेडिबल। क्या काम करते हो आप निखिल?
2: मैं कैब ड्राइवर हूँ, डीटीसी में टैक्सी ड्राइवर हूँ सर।
0: अच्छा यार, चलो एक तो यू नो आई वांट टू सेलिब्रेट ऑल ऑफ द वर्क दैट यू डू यार, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, एंड लिटरली यू आर द गाइस हु कैन कीप द व्हील्स ऑफ द यूएई रनिंग, राइट? तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? एंड डेडिकेट टू योर तन्हाई, दो गाने हैं जो जिसमें तन्हाई आता है, एंड मैं आपको पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। एक गाना ना मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स व्हेन आई फील अ बिट तन्हा, इट्स दिस बैंड कॉल्ड अग्नि, है ना? सुना आपने शाम तन्हा? एक ये वाला गाना,
3: शाम तन्हा,
0: गाने के अंदर तन्हाई है लेकिन मूड काफी हैप्पी है। हाँ, एक ये ऑप्शन ए इज दिस वन, द अदर वन इज क्लासिक सोनू निगम का गाना, ये वाला। ऐसी है जो अपने घर से दूर है, सबके लिए, हम सबके लिए, हियर्स दैट क्लासिक सोनू निगम गाना। निखिल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, राइट? हैव अ वंडरफुल टाइम, एंड आई रियली रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं दे ऑल एग्री विद मी, वी आर होपिंग कि ये जो आपकी जो जुदाई है वो बहुत जल्दी खत्म हो, एंड आप घर जाएं, एंड यू नो यू विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वेरी वेरी सून।
2: Thank you, sir.
0: Take care. That is Nikhil. इनकी तरह अगर आप भी request करना चाहते हैं, dedicate करना चाहते हैं, that special song to that special someone, give me a call right now, 800-1062. In the meanwhile, one of my all-time favorite Sonu Nigam songs from Dil Chahta Hai. This is the Big Breakfast with me, Sid.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: As some people totally thought that it was a cutie pie moment, other people said, ki Atithi, tum kab jaoge?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Kuch amazing ho gaya, an uninvited but very welcome, according to me, very welcome guest appeared at Dubai waterfront recently, and bahut sare videos iske are circulating online. I mean, imagine aap baithe restaurant pe enjoying the wonderful Dubai waterfront ka view, and then a whale shark appears. Yeah, a huge, it's like the largest fish species in the whole wide world. A whale shark swimming right beside a popular restaurant at the waterfront. So, काफी सारे लोगों का reaction तो वही हो गया जो परेश रावल का था.
2: अरे भाई, हमको नहीं पहचाना? हम लंबोदर चाचा, गोरखपुर वाले.
3: पहचाना?
0: लंबोदर चाचा गोरखपुर, और काफी लंबोदर फिश है ये. लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैव आल्सो काइंड ऑफ गॉटन इन्वॉल्वड सेइंग कि ये जो स्पॉट्स हैं इसके पीठ पे जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, और ये जो ब्रॉड हेड है, अनमिस्टेकेबली इट इज द व्हेल शार्क. बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि नहीं नहीं, अरे नहीं यार, व्हेल शार्क यहाँ पर अंदर पानी में कैसे आएगी यार ये है? नहीं, बट इट इज एक्चुअली अ व्हेल शार्क. सो कांग्रेचुलेशंस ऑल दोस पीपल हु स्पॉटेड इट. यू हैव स्पॉटेड अ प्रॉपर वाइल्ड फिश. लोग जान से गुजर के इसको स्पॉट करने के लिए चले जाते हैं समुद्र के अंदर, और फिर भी दे नॉट एबल टू स्पॉट इट. आपने रेस्टोरेंट में बैठे हुए इसको स्पॉट कर लिया. कमिंग अप जस्ट वाइल जान से गुजरते हैं फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
1: बिग 106.2.

0: Yo, it's Alfred, you see? InsuranceMarket.ae. Car, health, home, life, travel, and some business to 20,000 reviews, we've got the crew. InsuranceMarket.ae, largest in the UAE. InsuranceMarket.ae.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,880 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: Markets don't sleep. So why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals. So you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: ठीक सवा सात ऑन दिस वेंसडे की सुबह. 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, फील्स मोर लाइक 37. इट्स बीन अ नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस वेंसडे मॉर्निंग. हाइज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस.
8: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: You know what? Salary day obviously acha din hota hai. Lekin kafi hectic bhi. Cash nikalo, bills aur expenses ke liye paise alag rakho, phir baki paise ghar bhejne ke liye exchange center ke chakkar lagao.
7: Sab kuch itne mushkil tarike se kyun kar rahe ho? E&Money Money use karo.
6: Kya? सैलरी के लिए?
7: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
6: जैसे क्या?
7: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
6: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
7: बिल्कुल, E&Money मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money मनी के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: The Big Mix मिस किया गया?
8: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
9: You know, we've done this in, you know, our life at some point, हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे। अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे, यू नो, चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम, 50 दिरहम, जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था। 3 लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल। हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे। इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाले कहते हैं नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख। उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000 और 3 क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: Good morning, ठीक 7:30 on this Wednesday की सुबह। Let's take a look at Ajman Industrial, सबसे पहले Industrial Area 2 में। You'll find a bit of congestion on E11 heading towards E88 the junction. You'll find a bit of congestion वहाँ पर 7 से 8 मिनट की देर E11 पर going towards E88 जो सड़क बन जाती है and then further towards Sharjah International Airport. ये traffic आज बढ़ेगा, लिख के रख लीजिए। Also as you get out of city center Zaya 311 पर heading south going in the direction of city center Mirdif. यहाँ पर आपको मिलेगी 5-7 मिनट की देर as is to be expected. E11 पर coming back Itihad Road पर Alnad Interchange 1 is getting quite busy. So is Al Town Street, वहाँ पर a couple of incidents have been reported. Aaj subah se 611 is quite busy. 7-8 minute ki der heading south going towards Alavir you'll find. And 44 pe usual pocket of traffic going towards Business Bay from D3. And coming back to 311, there's another traffic area heading towards DSO. International City se you'll find 3 se 4 minute ki der.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: गुड डे।

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
2: आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.4

0: Blockbuster, right here on Big 106.2. And the most blockbuster thing that's happening every day, almost like a Bollywood pot boiler, is the gold rate.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: काफी dramatic उतार चढ़ाव हो रहा है. बांगडू 22 कैरेट ग्राम सोना down by 10 dirhams since yesterday. Closing हुई थी 476.25 and it's going to open at 466.25. वहीं 24 कैरेट ग्राम सोना आपको पड़ेगा 503.5 this morning, down from 514.25 की क्लोजिंग सिंस यस्टरडे. एक्सचेंज रेट्स फॉर द यूएई दिरहम, इंडियन रुपी 25.88, पाकिस्तानी रुपी .76 एंड बांग्लादेशी टाका 33.35. अगर आप कह रहे हैं यार ये सब छोड़ो, बताओ आम कितना महंगा हो गया है, आखिर द समर्स आर हियर. देन चौसा 2.8 किलोग्राम सुनते हैं कि 40 दिरहम में पड़ेगा. सिंदरी इज एट अराउंड 55 दिरहम्स फॉर अ 3 kg बॉक्स. आफूस, यप, the आम for every season 50 dirhams per box आपको पड़ेगा. And then there's the मल्लिका बदामी बंगनपली the सेरी varieties 35 se 45 dirham depending on the size and quality of the fruit. लेकिन I did a poll recently about

ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए. GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही.

0: What a song. 5.5 minutes का ये गाना है. But you still wish that it never ends, huh? It's the magic of A.R. Rahman. Unpopular opinion, I think A.R. Rahman is at his absolute best when he composes Qawwali.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: All right, Greg Chappell. अगर नाम सुन के आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है देन यू आर अ ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन. वी डोंट लाइक दैट नेम वेरी मच. बट अगर आप 2 मिनट के लिए अपना गुस्सा थूक दें, लिटरली मत करना भाई, फाइन माइन लग जाएगा. मेटाफोरिकली, जस्ट फॉर अ मोमेंट, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेग चैपेल. बट ही हैज गिवन 3 recommendations टू द वर्ल्ड ऑफ T20. कहते हैं कि 3 चीज़ें अगर T20 में कर दी जाएँ, उनकी रिकमेंडेशन अगर मान लिए जाए, तो देयर गोइंग टू बी मोर ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द बैट एंड द बॉल, वरना इट्स टर्निंग इनटू अ स्लॉग फेस्ट. आपने देखा आईपीएल में क्या हुआ, मतलब 200-250 तो पार स्कोर बन गया भाई. कैन यू इमेजिन, बॉलर पिटते रहते हैं, बैट्समैन पीटते रहते हैं. सो व्हाट आर द 3 things दैट शुड बी डन इन T20 टू काइंड ऑफ इम्प्रूव द बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल. रिकमेंडेशन नंबर 1, इफ द बैटिंग साइड लूजेस 6 wickets, दैट्स इट, इनिंग्स समाप्त. इनिंग समाप्ति की घोषणा हो जानी चाहिए एट 6 wickets, नॉट 10. ऑलराइट, रिकमेंडेशन नंबर 2, देयर मस्ट बी मैंडेटरी कंपल्सरी एटलीस्ट 3 millimeters ऑफ ग्रास ऑन द पिच, ताकि पेस बोलर्स को, फास्ट बोलर्स को थोड़ा तो कुछ परचेज मिले यार. बट ही गोज ऑन फर्दर टू एड के दिस शुड बी डन ओनली ऑन 1 साइड ऑफ द पिच, द अदर साइड इज अ टोटल कंप्लीटली बैरन टर्निंग सब कॉन्टिनेंटल का पिच. सो दैट बिकम मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर नॉट जस्ट द बैट्समैन बट ऑल्सो द कैप्टन, के टैक्टिकली कौन से बोलर को कौन से एंड से कब बोलिंग करवाई जाए. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड रूल नंबर 3, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, इज दैट इफ द बॉल आफ्टर पिचिंग इज गोइंग ऑन टू हिट द स्टम्प्स, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एन LBW. अभी ये होता है ना कि इफ इट्स पिचिंग आउटसाइड लेग तो ऑटोमेटिकली LBW इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. नहीं, वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी बॉल, मतलब तीसरी पिच पर भी डाले, लेकिन टर्न होकर इफ इट इज गोइंग ऑन टू हिट द विकेट्स, देन द बैट्समैन शुड बी गिवन आउट LBW. वॉट डू यू थिंक यार? दे ग्रेग चैपेल है तो कॉन्ट्रोवर्शियल तो उनके सुझाव होंगे ही. Do you agree with it? Don't agree with it? I'm going to do a poll on our Insta 106.2 Big FM about this as well. But in case you have a strong point of view, if you're a big cricket fan, give me a call, 800-1062. For coming up in just a while. Oh, saavan mein lag gayi aag. 10th of June is Mika Paji's birthday. Happy birthday, Mika Singh. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: A circuit, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। Visit Al Ras, Middle East ka number one auto AC spare parts dealer.
0: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
6: Yeah, right. I wish.
5: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
6: And the apartments?
5: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
6: I'm going now.
5: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
0: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: 8:27, and let's look at the capital Abu Dhabi. सबसे पहले you'll find a bit of congestion at E20, and ये रब्दान एरिया में आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, and going towards the Sheikh Zayed Grand Mosque वाला एरिया, यहाँ पर 4 से 5 मिनट की देर आपको मिलेगी। E30 मुसफ़ा इंडस्ट्रियल पे हल्का बुल्का ट्रैफिक, and coming back to E20, sector 13 खलीफा सिटी is also getting a bit busy. यास आइलैंड में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मुझे नजर आ रहा है। देन 311 पर दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ DLC पर यू'ल फाइंड 4 से 5 मिनट की देर। देन देयर इज द यूजुअल E44 का ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3। ऑल्सो 611 एमिरेट्स रोड पर सुबह से काफी कंजेशन है, हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अलवीर अल खवनीज 2 वाला एरिया। एंड देन द यूजुअल 311 E11 हेडिंग साउथ बाउंड गोइंग टुवर्ड्स दुबई, देयर इज अ 7 to 8 मिनट डिले अल टाउन स्ट्रीट पर ट्रैफिक है। बेरूत स्ट्रीट D62 पर 4-5 मिनट की देर इन बोथ डायरेक्शंस राइट आउटसाइड मदीना मॉल।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: यूजुअली जो ए आर रहमान के गाने के साथ होता है वही हुआ, एग्जैक्टली वही इस गाने के साथ विद मी मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा. मैंने पहले मेरे को लगा कि चलो मैया मैया फ्रॉम गुरु, इट्स गॉट दैट वाइब टू इट, बट देन Oof, it grows on you, and how.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: I've got Namneet with me on the phone line. Namneet, ki haal chaal, kidda, ki haal chaal?
2: All good, thank you.
0: आपकी आवाज से मुझे लग रहा है, आवाज सुन के मैं पहचान जाता हूँ लोगों के इंटरेस्ट क्या है. आवाज से नवनीत मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही बड़े फुटबॉल फैन है, am I right?
2: बहुत ट्राई किया फुटबॉल का, कुछ हुआ नहीं फुटबॉल में. क्रिकेट ट्राई किया, क्रिकेट का कुछ नहीं हुआ, दोनों छूट के हो गया. अभी जिंदगी ऐसे ही चल रही
0: है. प्लीज आई वांट टू नो एवरीथिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. आई वांट टू नो कि क्या ट्राई किया आपने बचपन में फुटबॉल में कि फिर दाल नहीं गली. हाउ डिड यू ट्राई, कुछ स्कूल टीम का हिस्सा होने का ट्राई किया या क्या हुआ?
2: तो आई ग्रोन अप यू नो मैंने स्कूल जहाँ पे ऐसा कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ था नहीं, बट यू नो इट वाज इन टाइम स्पेशली आफ्टरनून 3:30 to 4 o'clock वहाँ पे मिलता था. तो बेसिकली हमारे मैथ के एक्स्ट्रा क्लासेस होते तो उनसे बचने के लिए या तो किसी स्पोर्ट्स में कुछ करो. तो फुटबॉल एंड क्रिकेट वाज द मोस्ट लाइक यू नो हैपनिंग थिंग कि ऐसा 3:30 घुस जाओ तो एक घंटा निकल जाएगा उसमें.
0: बेसिकली क्लास बंक करने के लिए और लड़कियों को इम्प्रेस करने के, दो चीजों के लिए आप स्पोर्ट्स में घुसे थे. दूसरी वाला मुझे बता.

0: good life. It's all good life.
1: प्लीज आई वॉन्ट टू नो एवरी थिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. आई वॉन्ट टू नो कि क्या ट्राई किया आपने बचपन में फुटबॉल में कि फिर दाल नहीं गली. हाउ डिड यू ट्राई, कुछ स्कूल टीम का हिस्सा होने का ट्राई किया या क्या हुआ?
0: आई ग्रोन अप यू नो मैंने स्कूल जहाँ पे ऐसा कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ था नहीं, बट यू नो इट वॉज इन टाइम स्पेशली आफ्टरनून 3:30 to 4 o'clock वहाँ पे मिलता था. तो बेसिकली हमारे मैथ के एक्स्ट्रा क्लासेस होते तो उनसे बचने के लिए या तो किसी स्पोर्ट्स में कुछ करो. तो फुटबॉल एंड क्रिकेट वॉज द मोस्ट लाइक यू नो हैपनिंग थिंग, ऐसा 3:30 घुस जाओ तो एक घंटा निकल जाएगा उसमें.
1: बेसिकली क्लास बंक करने के लिए और लड़कियों को इम्प्रेस करने के, दो चीजों के लिए आप स्पोर्ट्स में घुसे थे. दूसरी वाला आप मुझे बता नहीं रहे हो, बट हाँ जब स्कूल में स्पोर्ट्स की थोड़ी तंगी होती है तो यही दो रीजन होते हैं दैट यू गेट इनटू स्पोर्ट. बट एनी अब देखते तो होंगे स्पोर्ट्स, फुटबॉल, फीफा इज कमिंग टुमारो, द वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग, सो यू डोंट हैव टू बी अ बिग फुटबॉल फैन. कोई प्रेडिक्शन, यू हैव फेवरेट टीम दैट यू विल बी सपोर्टिंग दिस टाइम?
0: No, I tell you an interesting story. I was in Ghana, I think 2005, in between 2005 and 2007.
1: Ghana, right? Not Thana.
0: Yes. Yeah. So, वो मैंने एक फुटबॉल का माहौल देखा था अफ्रीका में when Ghana qualified for the FIFA World Cup.
1: Wow.
0: The kind of emotion was there between the people in, you know, it was unbelievable, you know. क्रिकेट को देखता हूँ इंडिया में तो एक अलग क्रेज है, बट वो आई कैन स्टिल यू नो रिमेम्बर दोज इमोशंस फ्रॉम गानियन. यहाँ पे दोस्तों के साथ कभी ना कभी डेफिनेटली होगा.
1: वंडरफुल स्टोरी दैट इज यार, बट वही है कि टेक द क्रिकेट का पागलपन इन इंडिया एंड देन ट्रांसलेटेड टू 200 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट द वर्ल्ड कप इज कल से जो शुरू हो रहा है. सो यार देखते हैं क्या होता है. देर इज मेसी, रोनाल्डो, उनका लास्ट वर्ल्ड कप लोग कह रहे हैं, बट यू नेवर नो. एंड देन यू नो लॉट्स ऑफ ड्रामा दैट्स हैपनिंग इवन बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स. बट मैंने आपको एक बहुत ही ड्रामेटिक गाना सुनाया था, एंड फॉर ऑल ऑफ अस मिलेनियल्स दिस सॉन्ग होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट. सो पीपल हु जस्ट ट्यून्ड इन, फुटबॉल और बॉलीवुड का कनेक्शन इस गाने से दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे, ये फुटबॉल पैरोडी सॉन्ग कौन सी फिल्म में था?
0: ये था मिस्टर इंडिया.
1: मिस्टर इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस. चलो फुटबॉल में तो आपकी दाल नहीं गली, लेकिन बॉलीवुड में जरूर गलेगी, बिकॉज दो ओपन मूवी टिकट्स आपने जीत लिए. सो गो एंड एंजॉय योरसेल्फ एट द मूवीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड शेयरिंग दोस वंडरफुल स्टोरीज विद अस.
0: Thank you, sir.
1: Take care. That is Navneet, हमारे आज के विनर. Don't forget, कल से शुरू हो रहा है FIFA World Cup, and don't forget, रोज सुबह मौका for you to win two open movie tickets in the big Bollywood quiz.
2: प्रेम भाई, अरे गिरा तो.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
2: Yeah, right. I wish.
1: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
2: And the apartments?
1: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
3: I'm going now.
1: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: मॉर्निंग, 9:16 एंड इंटेंस अलके सीजन जून 7 से शुरू हो गया है. इट एंटर्ड इनटू दैट सीजन एंड टेम्परेचर गोइंग टू क्लाइम टुवर्ड्स 50 डिग्री सेल्सियस का पीक राइट नाउ. इट इज फार फ्रॉम इट. राइट नाउ द टेम्परेचर इज 33 डिग्रीज, फील्स लाइक 39, हाई ऑफ 35, लोज ऑफ 31 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ.
8: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: This tune, it's Game On with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
1: Plus five more winners taking home 1 million dirhams each.
2: And four 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
1: Score big, there's plenty in play.
2: Buy your ticket now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है?

0: अल रास?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अल रास है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अल रास।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ।
5: जेंजी ने आर्यन नाम रेड फ्लैग घोषित कर दिया है।
6: मैं खुद जेंजी हूँ तो मुझे बहुत दुख है इस बात का।
5: दुख क्या है, मतलब आपके नेम की ही इमेज है कि कई आर्यन ने लड़कियों का दिल तोड़ा होगा इसलिए सारे आर्यन बदनाम है। तो आर्यन तुम रेड फ्लैग हो नहीं हो?
6: मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, बाकी तो लोगों को पता।
5: रेफरेंस चेक के लिए 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के नंबर मुझे चाहिए। मतलब 3 एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब तो रेड फ्लैग है ना?
6: नहीं नहीं, ये तो बस खाली कहने की बात है।
5: अच्छा तो नहीं है, एक भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
6: डेफिनेटली नॉट।
5: क्या कर रहे हो तुम लोग जवानी में? हमारी जवानी में हम एक साथ 3-3 घुमाते थे। जब हमारी उम्र के हो जाओगे ना बेटा, बिकम 30 ईयर ओल्ड देन यू विल रियलाइज के तब कर लेते तो अच्छा रहता था, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
3: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
7: It's 9:26 on the clock and let's take a look सबसे पहले at first Alkhel Street, यहाँ पर काफी traffic होता है around this time. Alkhuz Industrial First से लेकर 3rd के बीच में in both directions you'll find 4-5 minute की देर. Then 63 Umm Sikkim Street पर also in both directions heading east and west you'll find congestion between Dubai Hills Mall and Mall of the Emirates. A bit of traffic at Hesa Street also unusually, and this is going towards E11 from 44. There's also congestion at JBT at the junction of 44 and 311. Speaking of which, heading towards Falcon City of Wonders, DSO, Silicon Oasis se aapko milegi 4-5 minute ki der. And also D89 pe aaj traffic hai as you take that exit from 311 going towards airport area. Yahan par aapko milegi 4-5 minute ki der. Then the usual 311, E11 heading south going towards Dubai from Sharjah, 7-8 minutes ka delay.
3: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: अरे को है क्या?
9: Yeah.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Speedy Hair Color. Covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Alex Ritson. The United States says it's completed a series of strikes against Iran. The US military said it targeted air defense systems, ground control systems, and radar sites. It described the attacks as a proportional response to the downing of an American helicopter on Monday. Iran's Revolutionary Guards say they've hit back by launching drones at a US base in Bahrain. Several homes and vehicles have been set on fire in Belfast after a knife attack in the city on Monday night caused anti-immigration unrest across parts of Northern Ireland. A Sudanese refugee has been charged with attempted murder. The US House of Representatives has passed a multi-billion dollar bill to fund immigration enforcement. The legislation now goes to President Trump for his signature. A former top official in the British government has advanced to the final round in the election to be the next governor of California. Steve Hilton will stand as a Republican. He was director of strategy for David Cameron when he was UK Prime Minister. Ecuador says it's arrested a Polish-born man wanted for international drug trafficking. The Interior Minister described the suspect as the key link between the Albanian mafia, armed groups from Colombia, and Ecuadorian gangs. The United States has called on European governments to impose travel restrictions on people who've recently visited Ebola-hit countries in Africa. The US wants to limit the spread of the illness during the Men's Football World Cup. And Serena Williams has won her first competitive tennis match in 4 years with victory in the first round of the women's doubles at London's Queen's Club. The 23-time Grand Slam singles champion paired up with Canadian teenager Victoria Emboko to win in straight sets. BBC.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बच जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films, and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: बिल्कुल सही. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. 10:03 ऑन द बिग क्लॉक विद मी ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स. दिस इज बिग 106.2. वी आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क. बहुत ही मुझे मतलब खुशी हुई है ये न्यूज पढ़ के, बिकॉज आई एम वेरी वेरी बिग ऑन गुड बॉलीवुड कॉमेडीज एंड नॉट द टिपिकल वंस. है ना, ये वही पूछ लिया कौन सी फेवरेट कॉमेडी है, बोलते हाँ हेरा मेरी फेवरेट है, अंदाज अपना अपना. ये तो मतलब टिपिकल है ही, सबके फेवरेट्स हैं. बट आई लाइक वन पीपल हैव वॉच्ड यू नो ऑल काइंड ऑफ यू नो कॉमेडी मूवीज एंड हैव समथिंग डिफरेंट और समथिंग यूनिक टू से कि यू नो ये मूवी जो थी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी. ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है बट इट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. आई हैव अ फ्यू नेम्स इन माई माइंड वैसे अनकन्वेंशनल बॉलीवुड कॉमेडीज के दैट आई फील लाइक यू नो दे डिजर्व अ लॉट मोर अप्रिसिएशन, दे डिजर्व टू बी टॉक्ड अबाउट बिकॉज दे वर सो सो हिलेरियस. ऐसी ही एक मूवी का एक और इंस्टॉलमेंट आ रहा है बिकॉज द लास्ट इंस्टॉलमेंट रियली रियली फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस. दिस वन हैज टू मेक अप फॉर दैट. यार किस मूवी की मैं बात कर रही हूँ, आई विल टेल यू इन जस्ट अ बिट. लेट्स किक स्टार्ट द आर. अरिजीत सिंह की आवाज, हाँ मैं गलत, जो आई डोंट थिंक किसी औरत ने कभी बोला है. ज़ोहरा के साथ हूँ. गुड मॉर्निंग, दिस इज द बिग मिक्स.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: This tune, it's game on with Big Ticket.
4: A guarantee 25 million dirhams up for winning.
3: Plus 5 more winners taking home 1 million dirhams each.
4: And 4 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
3: Score big, there's plenty in play.
4: Buy your ticket now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
2: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
8: 34 डिग्री सेल्सियस है बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 49% पे, हाईज आज जाएंगे 37 तक। इट्स गोइंग टू बी अ ब्राइट एंड सनी डे टुडे, 10:24 ऑन द बिग क्लॉक।
2: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव.ae।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month.
1: हाँ जी, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द ईयर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae। बिल्कुल ही अफोर्डेबल कार रेंटल यहाँ पे इन द यूएई अगर आपको कहीं मिल सकता है वो सिर्फ सेल्फ ड्राइव पे है, बिकॉज इट इज जस्ट स्टार्टिंग एट 899 dirhams a month। 899 dirhams a month, नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नो स्ट्रेस एट ऑल। बस गाड़ी उठाओ, चलते बनो यार, गेट ड्राइविंग। सर्च selfdrive.ae और डाउनलोड द ऐप नाउ। दिस इज सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे।
2: Home and out at home.

अफोर्डेबल कार रेंटल यहाँ पे इन द यूएई अगर आपको कहीं मिल सकता है वो सिर्फ सेल्फ ड्राइव पे है, बिकॉज इट इज जस्ट स्टार्टिंग एट 899 dirhams a month. 899 dirhams a month, नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नो स्ट्रेस एट ऑल. बस गाड़ी उठाओ, चलते बनो यार, गेट ड्राइविंग. सर्च सेल्फ ड्राइव.ae और डाउनलोड द ऐप नाउ. दिस इज सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर हेडेड टुवर्ड्स शारजा E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, आपको थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक वहां पर मिल जाएगा, स्पेशली अगर आप वर्का 1 के पास है। हैवी ट्रैफिक ऑन E44 रासलखोर रोड D3 वाले जंक्शन के पास, एक कार एक्सीडेंट की वजह से वहां पे एटलीस्ट अबाउट 15 मिनट डिले दैट यू आर गोइंग टू गेट। उसके अलावा आपको थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक मिल जाएगा रासलखोर इंडस्ट्रियल एरिया 2 के पास, दिस इज अराउंड D77 मनामा स्ट्रीट, वहां पे कम से कम 15 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है। थोड़ा सा और ट्रैफिक आपको मिल जाएगा D94 जुमेरा रोड पे भी, लाइट मॉडरेट है, सो इट्स अबाउट 4 to 5 minute डिले ऑन दैट रोड। उसके अलावा अगर आप है D85 बनिया स्ट्रीट पे, वहां पे भी लाइट ट्रैफिक है, 5 to 6 minute का डिले। एनी अदर अपडेट लेट अस नो ऑन 4305।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Vishal Mishra ki awaaz from the movie Sayara right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. बात हो रही थी अनकन्वेंशनल बॉलीवुड कॉमेडीज की. मेनी मेनी मूवीज दैट हैव कम टू माई माइंड. बट मैंने आपसे पूछा था इफ यू नो एनी सच मूवी दैट यू फील लाइक आपको बहुत पसंद आई. नॉट मेनी पीपल स्पोक अबाउट इट. आई बस और चली गई एंड उसका वो इम्पैक्ट रहा नहीं एंड यू फील लाइक होना चाहिए था. आई जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम अंकिता एंड शी थिंक्स मड़गांव एक्सप्रेस द मूवी इज़ वेरी अंडर रेटेड. एंड आई अग्री यार, ये मूवी मतलब कास्ट वॉज ब्रिलियंट एंड आई फील लाइक इट्स बिकॉज यार गो गोवा गॉन वाला इसमें वो वाइब था ऑनेस्टली स्पीकिंग. And I am in love with the movie Go Go Agon. So Madgaon Express, agar aapne nahi dekhi hai, it's a very very fun movie. I don't want to give any spoilers, but you have to watch it. According to Ankita, it is a laugh out loud comedy, buddy comedy. Jaise dil chahta hai hamari jo thi, usko agar aapne Go Go Agon ke saath ek fusion bana diya, so that is what the output would be. So very very thoughtful, I think that is. Thanks Ankita for the message. But agar aapko lagta hai there's any other movie that you feel deserves to be spoken about, it was a brilliant comedy जो बॉलीवुड ने बनाई थी बट वो उतनी यू नो इंपैक्टफुल बड़ी नहीं हो पाई. सो लेट मी नो, ड्रॉप योर मैसेजेस. 4305 इज द नंबर. यू कैन इवन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम. ज़ोहरा अमीन इज माय हैंडल देयर.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 11:07 जोहरा के साथ ऑन द बिग मिक्स।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, that's right. You're with me, Zohra, on The Big Mix. This is The Beat of Bollywood. I keep you company until 2. फिलहाल हम बात कर रहे हैं यार, अगर आपको भी डूम स्क्रोलिंग की आदत है, दिन रात आप कुछ भी कर रहे हो, फोन आपके हाथ में होता है, यू आर कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, बस यही काम रह गया आपका जिंदगी में, देन आई थिंक There could be a sign that आप financially broke हो रहे हो, गरीब होते जा रहे हो, आपके पैसे खर्च होते जा रहे हैं. This is according to a new article, a new study, a research has found a connection between spending more than 6 to 8 hours a day on phones and greater financial struggles. So you know how, especially if you have an iPhone, आपको ये notification तो आता ही होगा हर हफ्ते. Every Monday you get notified. Weekly report एक आती है which says कि on an average आपने कितने घंटे spend किए on your phone per day. वो एक रिपोर्ट आती है. उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपने 6 से ज़्यादा घंटे स्पेंड किए हैं ऑन योर फोन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे बी गोइंग ब्रोक. फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत होंगे आपकी जिंदगी में. नाउ व्हाट द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट इज दैट व्हेन यू स्पेंड मोर आवर्स, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यू नो, मोर आवर्स ऑन योर फोन, इट्स लिंक्ड टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली, बिकॉज इट लीव्स यू विद लेसर टाइम टू डू एक्चुअल वर्क, क्योंकि आप वही कर रहे होते हो. इंपल्सिव बाइंग हो जाती है आपसे व्हाइल यू आर स्क्रोलिंग, यू नो एंड अप सीइंग थिंग्स, पसंद आ जाती है, मन उस पर अटक जाता है, वो खरीदने का दिल करता है, इंपल्सिव बाइंग हो जाता है, ओवर स्पेंडिंग हो जाता है. And this is all driven by social media exposure and constant digital consumption. And Americans mein to ye aaya hi hai ye average that you know about 5 hours at least per day people spend on their phones, and that's already a 14% increase in 2 years, which is really sad. Also Gen Z jo hai wo to humse bhi badtar, wo to 6

घंटे 7 घंटे से ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं. मेरा एक दो बार ऐसे आया है. यूजुअली आई एम ऑन एन एवरेज ऑफ 3 to 4 hours. दैट्स माई एवरेज रिपोर्ट. बट इन द पास्ट कपल मंथ्स आई थिंक आई हैव टच्ड अबाउट 5 hours. सो आई एम बॉर्डर लाइन देयर. आई डोंट वॉन्ट टू गेट देयर क्योंकि ये इम्पल्सिव बाइंग वाला मेरे नेचर में है. आई एम समवन हु इज़ वेरी मच इन टू फैशन, यू नो दैट. मैं कोई भी चीज़ ऐसी अच्छी अट्रैक्टिव देख लेती हूँ, आई इंस्टेंटली वॉन्ट टू बाय इट. सो इफ यू टू आर समवन हु इज बीन टेम्प्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स एंड ये डिजिटल कंजम्पशन आपका ज़्यादा हो रहा है, टेक दिस एज अ वार्निंग. प्लीज़ अगर आपको ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं फ़ोन पे दैट यू स्पेंडिंग मोर देन 5 to 6 hours, यू नीड टू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक. यू नीड टू ब्रीद एंड यू नीड टू सिट एंड एक्चुअली थिंक वॉट इज माई प्रायोरिटी. डू आई नीड टू बी स्पेंडिंग दिस मच टाइम ऑन माई फोन्स और डू आई नीड टू एक्चुअली डू समथिंग दैट मेक्स मी फील प्रोडक्टिव.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: Hi Clarence.
7: Hi Mansi.
6: मैं पूछ रही हूँ, what are not so obvious signs जिससे आपकी बीवी आप पे शक करेगी, क्योंकि मैं बात कर रही थी एक वीडियो की जिसमें गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के बाथरूम में फेस वॉश देखा और वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि यूजुअली लड़के जो है साबुन से मुंह धो लेते हैं, उसी से बाल धो लेते हैं ना, तो उसे शक हुआ। तो आपकी बीवी किस चीज को लेकर शक करती है आप पे या कर सकती है?
7: ऐसे तो शक नहीं करती, शी इज वेरी नहीं नहीं क्या बोलूंगा, आई एम नॉट साइनिंग दोस वर्ड्स, बट शी इज लाइक का वो डाउट नहीं करती हो।
6: आज तक कभी शक नहीं करा?
7: नहीं नहीं,
6: मतलब यू आर वेरी गुड हस्बैंड और यू आर वेरी स्मार्ट।
7: हाँ, कभी कभार अगर गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाए तब वो पकड़ेगी, गई यहाँ कौन बैठी थी या बैठा था, अगर
6: वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट
7: बैठी थी तो देन शी इज जस्ट लाइक इट्स लाइक व्हाट यू से फ्रेंडली वे।
6: There's nothing that we ask you guys in a friendly way, mind you. We might just pretend that we're very casual about it, but the moment we figure out the reality, there is nothing casual about us.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत। मैं अपनी favorite हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big Weather Update brought to you by Alras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
12: 35 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 49% पे, हाईज आज जाएंगे 37 तक, लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 32 लेटर टुनाइट।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। 106.2 The Beat

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो
3: अजिंक्य, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग सर।
3: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले। क्या आपका दिन कैसा रहता है?
4: नॉट लाइक मच चैलेंजिंग, बट थिंग इज व्हाट वी आर डूइंग द क्वालिटी चेक फॉर द मेडिसिन व्हाट वी आर टेकिंग। तो जो दवाई हम लोग खाते हैं उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्योरिटी चेक करना, ये हमारा प्रोफाइल रहता है।
3: ओह वाओ यार। So nothing to do with a virus or bacteria or something. मेरे को लगा कि usually ये germs इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, ये इंसान इन germs के पीछे दौड़ता है। Virus मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: कंपनी का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है।
3: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो भाई हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊँ आपको? आप इसी काम के लिए आए हो। तो आप कंपनीज की हवा पानी चेक करते हो, ये अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार। आई मीन इट्स
4: एग्जैक्टली
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: यार ये एक चीज में मुझे बड़ा ही मतलब ऐसे प्राउड फीलिंग आ रही है अंदर से, बिकॉज अब्रीविएशंस जो है वाइल टेक्सटिंग ये हमने इन्वेंट किए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स, बिकॉज वी थॉट वी कुड सेव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बाय यू नो मेकिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ सर्टेन फ्रेजेस. एंड नाउ यू नो आजकल की जनरेशन जो है इतने सारे अलग अलग टर्म्स बना चुके हैं दैट दे फाइंड एवरीथिंग दैट वी डू वेरी लेम, है ना. तो व्हाटएवर, आई एम हियर टू प्रूव देम रॉन्ग, बिकॉज मेरे सामने लिस्ट आई है दैट टॉक्स अबाउट द मोस्ट यूज्ड अब्रीविएशन टिल डेट. मोस्ट यूज, हाँ आज तक के ज़माने में भी ये कब सबसे ज़्यादा यूज़ होते आए हैं. एंड इस लिस्ट में आई थिंक 90% हमारे वाले ही अब्रीविएशंस है. सो वट एवर इट इज़, जेन ज़ी जो भी बोल दे, हमने बहुत अच्छा काम किया था. आई विल ऑलवेज से दैट. नंबर 10 पे है फोमो. नाउ दिस इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, आई डोंट रिमेंबर डिड वी मेक दिस और डिड द जेन ज़ी कम अप विद फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट्स ऑन नंबर 10. नंबर 9 पे, ओके दिस इज़ अ वेरी जेन ज़ी अब्रीविएशन, IYKYK, दैट इज़ इफ़ यू नो यू नो, ये जेंजी ने बनाया है, दैट्स ऑन नंबर 9. नंबर 8 पे है FYI, दिस इज अस, प्लीज कम ऑन. FYI बहुत यूज होता है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये यूज होने लगा है, दैट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन. नंबर 7 पे है समथिंग दैट जेंजी केम अप विथ,

एजेंसी जो भी बोल दे, हमने बहुत अच्छा काम किया था. आई विल ऑलवेज से दैट. नंबर 10 पे है फोमो. नाउ दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. आई डोंट रिमेंबर डिड वी मेक दिस और डिड द एजेंसी कम अप विद फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. दैट्स ऑन नंबर 10. नंबर 9 पे, ओके, दिस इज अ वेरी एजेंसी अब्रीविएशन, IYKYK, दैट इज इफ यू नो यू नो. ये जेंजी ने बनाया है. दैट्स ऑन नंबर 9. नंबर 8 पे है FYI. दिस इज अस, प्लीज कम ऑन. FYI बहुत यूज होता है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये यूज होने लगा है. दैट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन. नंबर 7 पे है समथिंग दैट जेंजी केम अप विथ, SMH, विच इज शेक्स माई हेड और शेकिंग माई हेड, विच आई फील लाइक इज वेरी सिली. कौन यूज करता है SMH? देन देयर इज नंबर 6 पे BRB, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट यूज. मिलेनियल्स ने, बूमर्स ने, जेंजी ने, हर किसी ने यूज किया है. नंबर 5 पे है NGL. ओके, this is Gen Z, have to give it to them. It's for not gonna lie. Doesn't make sense at all. मैंने कभी use नहीं किया है. Number 4 पे है TBH. चलो ये use करते आए हैं. A lot of people think that it is useful, which is to be honest. Number 3. Now these are the top 3. Number 3 पे है OMG, which obviously we came up with, not Gen Z, so it is oh my god. Number 2 पे है IDK. Again something that we came up with, which is I don't know. And on number 1, again something that we came up with, which is LOL, laugh out loud, laughing out loud. वो आज तक use होता है, whether it is in the actual sense or whether it is in the sarcastic sense which Gen Z likes to use, you're still using it, which means you are using something that we came up with. So that I take as a personal achievement and as a personal victory ki humne jo abbreviations banaye the aaj tak Gen Z ke zamane mein bhi hamare abbreviations sabse zyada use hote aaye hain. I know is cheez ki koi trophy, koi award kuch nahi milne wala, but personal satisfaction ki bhi koi matlab maine hote.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
3: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
4: ये है ज़ोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2

0: Bollywood. Missed your morning buzz?
1: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो
2: अजिंक्य, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग सर।
2: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले। क्या आपका दिन कैसा रहता है?
3: Not like much challenging, but thing is what we are doing the quality check for the medicines what we are taking. So जो दवाई हम लोग खाते हैं उसकी microbiological purity check करना ये हमारा profile रहता है।
2: Oh wow यार। So nothing to do with a virus or bacteria or something. मेरे को लगा कि usually ये germs इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, ये इंसान इन germs के पीछे दौड़ता है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
3: कंपनी का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है।
2: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊं आपको, आप इसी काम के लिए आए हो। तो आप कंपनी की हवा पानी चेक करते हो, ये अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार। आई मीन इट्स
3: एग्जैक्टली
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
4: हाँ जी, ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड हेडिंग टुवर्ड्स शारजा, आपको वर्का 1 के आसपास थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। ऑल्सो थवार 4 इज शोइंग लाइट्स एंड मॉडरेट ट्रैफिक, अबाउट अ 6 to 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। E44 लेकर जा रहे हैं बिजनेस बे की तरफ, तो D3 वाले जंक्शन के पास भी आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिल सकता है, 8 से 10 का वहां पर डिले मिल जाएगा। उसके अलावा इफ यू आर ऑन E11 शेख ज़ायद रोड ट्रेड सेंटर 2 के पास बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। एनी अदर अपडेट यू कैन हिट अस अप, 4305 इज द नंबर।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market. Dot-A-E.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: बाहर का तापमान फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस, इट फील्स लाइक 43. एक्सट्रीमली ब्राइट सनी डे, हाइज इससे ज्यादा होपफुली नहीं जाएंगे. लोज विल डिप डाउन टू अबाउट 31. ह्यूमिडिटी फिलहाल है 55% पे. ऑल इन ऑल वेरी हॉट.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

ये जानवर भी करते हैं. एंड इट इज सो फैसिनेटिंग टू रीड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट एनिमल्स विल डू टू गेट अ पार्टनर, टू गेट समवन्स अटेंशन, टू प्रूव हाउ मच दे आर केपेबल ऑफ लविंग अदर पार्टनर, है ना. तो अब मैंने ये आर्टिकल पढ़ लिया जहाँ पे देव लिस्टेड आउट अ फ्यू एनिमल्स हु स्टूड आउट. एनिमल्स भी है, सी क्रीचर्स भी है, बट देर आर फ्यू दैट आई वुड रियली रियली लाइक टू टॉक अबाउट बिकॉज इट्स सो अडोरेबल. पेंगुइन्स. पेंगुइन्स मतलब आपको पता ही है, वो एक पेंगुइन जो वायरल हुआ उसके लिए इतनी सिंपति एम्पैथी आ गई हमारे दिल में थे. पेंगुइन्स अचानक से बन गए सबके फेवरेट, है ना. तो पेंगुइन्स दे प्रपोज विद द परफेक्ट पेबल. अ पेंगुइन इफ ही वांट्स टू प्रपोज टू अ पार्टनर, अ फीमेल पेंगुइन और व्हाटएवर, ही विल गो इन सर्च ऑफ द परफेक्ट लुकिंग पेबल. एकदम स्मूथ हो, इवन सर्फेसिस हो, राउंड शेप्ड हो, कलर अच्छा हो, परफेक्ट पेबल ढूंढ कर ही विल कम एंड पुट इट एट द फीट ऑफ द पार्टनर. If the partner is impressed with the pebble, वो एक agreement हो जाती है दोनों के बीच में, दोनों हाथ में हाथ मिला के अपने दुनिया में निकल पड़ते हैं. But that is, I think, very, very adorable. Penguins picking the perfect pebble to propose. There are these bowerbirds engineer who have these optical illusions that they set up, you know, पत्तों से, petals से, पत्थरों से, एक पूरा एक ऐसे optical illusion सा बनाते हैं. And any bird flying above, if they are seeing that illusion वाला जो है setup, and if they like it, if they are impressed by it, they will come and approach the bird and say whether or not they are interested in them. Same thing, जो लोग ground पे करते हैं, जो birds ground पे करते हैं, वो ये puffer fish in the sea करती है. So on the sand, you make all the sand art. हमने तो बहुत किया है, beach पे sand art बहुत बनाया है, but the puffer fish does it at the end base of the ocean, which is एकदम intricate detailing. आप architecture देखोगे इस level का, उस level का ये sand art बनाते हैं. That is how they impress their partner. Humpback whales. These are the musical beings. जो यहाँ पे हम लोग गिटारे बजा बजा के गाने गा के लड़कियों को इंप्रेस करते हैं, हमबैक व्हेल्स आल्सो कंपोज सॉन्ग्स व्हिच स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर ओशन. सो बेसिकली अगर उन्हें अट्रैक्ट करना है, दे हैव देयर ओन फ्रीक्वेंसी इन व्हिच दे सिंग, एंड इफ दे यू नो आर एबल टू इंप्रेस देयर पार्टनर, द व्हेल एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स बैक टू देम, व्हिच इज आई थिंक fascinating that they're able to sing and impress their partners. The albatross bird, they spend a decade learning a dance. Wow, I always thought कि ये dance वांस वाली जो चीज़ें हैं ये अरीचे भर के थे सिर्फ हम इंसान करते हैं, but they actually put an effort in planning an entire choreography. पूरा plan करते हैं, choreography बनाते हैं, ये step first, ये step second, and then they perform in front of their partner. Then if the partner is interested, they perform back with them, coordinating the steps, and that's how it means कि the person has agreed to, you know, being my partner, which is so interesting to see कि यार animals किस हद तक जाते हैं ना आपको impress करने के लिए. They are putting in so much effort. और यहाँ पे आजकल के बच्चे ये नया नया टर्म बना के, वी आर इन अ सिचुएशनशिप, आई एम नॉट हैप्पी, गोस्ट कर देंगे, बेंच कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे. दिस इज अ लेजी जनरेशन. आई फील यू शुड नॉट इवन बी टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अस मिलेनियल्स एनीमोर. यू शुड बी टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज दैट्स हाउ लेजी दिस जनरेशन इज.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsurancemarketE.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 119 on the Big Clock. Hanji Zohra ke saath. This is the Big Mix. इश्क में नादानिया मूवी से आपने गाना सुना, इश्क में लोग क्या क्या कर जाते हैं ना, मतलब आजकल तो कोई नहीं करता. आई डोंट सी एनीवन पुटिंग एनी एफर्ट दीज डेज. बैक इन द डेज यस, बहुत सारे लोग बहुत कुछ किया करते थे टू प्रूव देयर लव, एंड आई थिंक दैट वाज एन इंस्पिरेशन. तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम इंसान ये करते थे, है ना,

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ।
5: हाय क्लारेंस।
6: हाय मानसी।
5: मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर नॉट सो ऑब्वियस साइंस जिससे आपकी बीवी आप पे शक करेगी, क्योंकि मैं बात कर रही थी एक वीडियो की जिसमें गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के बाथरूम में फेस वॉश देखा और वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि यूजुअली लड़के जो है साबुन से मुंह धो लेते हैं उसी से बाल धो लेते हैं ना, तो उसे शक हुआ। तो आपकी बीवी किस चीज को लेकर शक करती है आप पे या कर सकती है?
6: ऐसे तो शक नहीं करती, नहीं क्या बोलूंगा, का वो डाउट नहीं करती हो।
5: अच्छा, आज तक कभी शक नहीं करा?
6: नहीं नहीं,
5: मतलब यू आर वेरी गुड हस्बैंड और यू आर वेरी स्मार्ट।
6: हाँ, कभी कभार अगर गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाए तब वो पकड़ेगी गई यहाँ कौन बैठी थी या बैठा था।
5: वेरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट।
6: बैठी थी ये तो देन शी इज जस्ट लाइक इट्स लाइक व्हाट यू से फ्रेंडली वे।
5: There's nothing that we ask you guys in a friendly way, mind you. We might just pretend that we're very casual about it, but the moment we figure out the reality, there is nothing casual about us.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल नॉट सो बैड, ऐसे लग रहा है कि लोग अभी से छुट्टियों पे जा चुके हैं, समर वेकेशन जल्दी शुरू हो चुके हैं। E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, थोड़ा सा लाइट से मोटर ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। D93 तुनी स्ट्रीट से आगे जाते हुए त्वार फोर्ट के पास मोटर ट्रैफिक है फॉर अबाउट 6 to 7 मिनट्स। एक माइनर कार एक्सीडेंट हुआ है D62 नादल हमार स्ट्रीट पे, कॉजिंग अबाउट 5 to 6 मिनट डिले देयर इज वेल। E44 एज पर यूजुअल D3 के पास मोटर ट्रैफिक है 5 to 6 मिनट का, वहां पर डिले। थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा अगर आप है D83 रबात के पास, ऑल्सो D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट के पास, वहां पे एटलीस्ट अबाउट 2 to 3 मिनट का बंपर टू बंपर ट्रैफिक। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन 4305।
1: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स On Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: Wow. Yeah.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Absolutely यार, मैं तो हूँ ही अपनी फेवरेट, लेकिन आप भी मेरे फेवरेट हो। बट विद दैट इट्स माई टाइम टू टेक योर लीव बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टू। आई हैव टू क्लियर आउट द स्टूडियोज, आई हैव टू गिव इट टू उज्ज्वल बिकॉज क्या करें यार, सिर्फ 4 घंटे मुझे मिलते हैं एंड आई हैव टू क्लियर आउट द स्पेस फॉर हिम। मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम इज ज़ोहरा अमीन, यू कैन गो फॉलो मी ओवर देयर। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस 106.2 बिग एफएम पे, जो भी हम मस्ती ऑफ एयर कर रहे होते हैं, यू गेट टू कैच ऑल ऑफ दैट ऑन आर इंस्टा हैंडल विच इज 106.2 बिग एफएम। सो मेक श्योर टू गो फॉलो अस ओवर then. I'll now see you tomorrow morning 10 se 2 ke beech on the Big Mix. Until then, stay blessed and stay tuned to Big 106.2. This is the Beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं. शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है. बार बार नहीं होता.
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix miss किया गया.
3: कर ही नहीं सकते. चाहो भी तो नहीं कर सकते.
4: You know, we've done this in, you know, our life at some point. हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो. हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे. अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे. यू नो, चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम 50 दिरहम जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए. यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था. तीन लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल. हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे. इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाले कहते हैं नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख. उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000 और तीन क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: अरिजीत सिंह की आवाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। जन्म जन्म जितने भी जन्म ले लूं मैं, एक चीज जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है, पता नहीं आपको मोहब्बत है नहीं है, वो है आलू।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: दैट्स करेक्ट। आई जस्ट लव पोटैटोज। आई कैन हैव पोटैटोज 7 days। I really can. In fact, my wife also loves potato. But आप देखो कितनी funny चीज़ है। मेरे बेटे को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। Like he is the one who is very picky about potatoes. I don't know. He doesn't even know the spelling of health right now. But maybe he's setting his ground standards very clearly to me. But आलू उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। But who in the world doesn't love potatoes? Like it is the staple. It is the go-to. It is literally in everything where we talk about. चाहे वो Indian dishes हो या फिर वो हो Mediterranean dishes. Okay, so now let's go to Lebanon and Syria and all these countries. और वहाँ से ये बहुत ही दमदार, tasty, delicious आलू की dish आती है. I will explain it to you. You got to tell me the name, the exact name that you see in the menu. How do you read this name? Okay. So basically, ये जो Lebanese dish है, it translates into spicy potatoes. Crispy fried potatoes होते हैं ये. And it's tossed in spicy sauce with lemon and cilantro. So there's a generous amount of cilantro in this. And of course, there's a lot of spice to it. हालांकि उनके लिए वो लौटा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं. हमें तब भी लगेगा कि फीका है एकदम. But still, it is called the spicy potatoes of Lebanon. If you know the answer to this one, 800-1062 is my toll-free number, which is 800-1062. जो इसका सबसे खास टेस्ट आता है, वो है रेड पेपर से, कोरिएंडर से, चिली से, and the icing is garlic. लहसुन से आता है इसका. 800-1062, if you know the answer to this one, dial in right now as I keep giving you nice and easy tracks in the afternoon time from 2 till 5. This is The Big Life.
2: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

just the kind of space you want for your afternoon drive. Some easy breezy tracks is what I play. कुछ ऐसे गाने जो आपके mood को compliment करते हैं दोपहर में when you just want to take a pause and restart, rewire the rest of the day. This is Big 106.2 Ujjwal Khanna ke saath Into My Theme Hour. अभी थोड़ी देर में बस जब शुरू होगा. I'll be talking about Imran Hashmi and the reason for that is when I get into my next hour. Till then. एक और बहुत ही ऐसा नाइस ड्राइव काइंड ऑफ अ सॉन्ग प्रतीक कुमार की आवाज में द ट्रैक इज तूने कहा मैंने सुन लिया आपके साथ अंटिल फाइव आप कहेंगे मैं सुनूंगा एंड वाइस वर्सा स्टिक अराउंड

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
4: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2,
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जन्नत से ये गाना बिग 106.2 पे, सारे गाने जन्नत हैं इमरान हाशमी के बिग 106.2 पे, उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। गुड आफ्टरनून टू यू।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एक्टर्स की जो लाइफ है वो बिग हमेशा रखता है, कौन वो है उसका फैन। और जो इमरान हाशमी का जो फैन का जो डेटाबेस है वो इतना बड़ा है कि अगर वो बिक गया किसी दिन तो वो मतलब मेरे को लगता है अरबों के भाव में बिकेगा। लाइक इफ देयर इज अ प्रोडक्शन हाउस हु वांट टू जस्ट सेंड अक्रॉस ईमेल मार्केटिंग ईमेल्स टू पीपल, यू विल हैव इनफ ऑन दैट प्लेटर। एनीवे नाउ एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट अवारापन 2। वो फिल्म अनाउंस हुई है बहुत जल्द एंड ये रिलीज भी हो जाएगी एंड वी कांट वेट फॉर अवारापन 2 happen again and he's talking about this one, have a listen.
2: चलते चलते लास्टली अवारापन 2 के अनाउंसमेंट हुई है, पीपल आर वेटिंग फॉर इट। कुछ बताइए इस बार क्या होने वाला है, वही रूप आने वाला है वापस?
3: या बिल, शिवम का एक्सटेंशन, उस कैरेक्टर का एक्सटेंशन, ही लिव्स ऑन। और अब ज्यादा उसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ, बट वो सारी चीजें जो ओरिजिनल में थी, ऐसा नहीं है कि हम बिना वजह एक सीक्वल बना रहे हैं। इसमें एक अच्छी कहानी है जो इस सागा को आगे लेके जाती है। सो ऑल दोस थिंग्स ऑफ हीरोइज्म, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, एंग्स, सैक्रिफाइस, गॉड, वो सारी चीजें अब इस फिल्म में भी होंगी।
0: Can't wait. अवारापन देखिए, आप नहीं देखिए तो प्लीज देखो। इनफैक्ट आपको इमरान हाशमी मूवी मैराथन करना चाहिए, तीन दिन की छुट्टियां जब आ रही है, सैटरडे संडे मंडे। You will really love Avarapan. And since talking about this film, let's play the song. Mustafa Zaid ke baaz, the track is To Phir Aao. It's like a perfect jammer in the afternoon time on The Big Life.
1: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: 101.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
8: गूगल से मेरी लड़ाई का चौथा दिन है, 34 डिग्री दिखा रहा है और फील करवा रहा है 43 डिग्री सेल्सियस। कैसा हो सकता है इतना डिफरेंस? 10 डिग्री का जो डिफरेंस है ये फीलिंग में ही आ रहा है। एक तो डिग्री चलता है यार, कम ऑन गूगल, फिगर अ ब्रश अप, है ना। अपना थोड़ा सा टेक्निकल एबिलिटीज AI जो जोन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बट व्हाट दे आर सेइंग आई एम सेइंग एज इट इज। 34 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर राइट नाउ, फील्स लाइक 43 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी अबाउट 58%, वी गो डाउन टू अ मिनिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस। आशा ताई के बाद फ्रॉम द फिल्म ताल, हार्ड हिटिंग ट्रैक इट इज, कहीं आग लगे लग जावे, आपके साथ अंटिल 5।
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

ऐसा ही होता है, जब मैच भी होता है तो किसी को तौबा करना पड़ता है, किसी को सजदा करना पड़ता है। उज्जवल खन्ना के साथ गुड इवनिंग टू यू, बिग 106.2 पे। इट कैन नॉट गेट बिगर देन टुमारो, द फीफा ऑफिशियली किक्स ऑफ। एंड कल मैंने करी थी फैन जोन्स की बात कि कितने सारे फैन जोन्स बन रहे हैं इन द यूएई, एंड इट्स सो फन, सो मच फन, इररिस्पेक्टिव व्हेदर यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ फुटबॉल और नॉट। इट्स जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सी द फ्रेंजी एंड द मैडनेस अराउंड, आपको मजा आता है, आपको लगता है कि ओ माय गॉड, यू नो आई एम पार्ट ऑफ द डील, है ना। हर चीज जरूरी थोड़ा ना कि समझ में आ जाए, और अगर आ जाती है तो अच्छी बात है। वेल, फीफा 2026 ये सबसे बड़ा मोस्ट एम्बिशियस टूर्नामेंट है इन द इवेंट्स हिस्ट्री। थोड़ा सा फैक्ट्स बता रहा हूँ 2026 में फीफा में क्या होने वाला है, क्या क्या चेंज होगा। एक्सपैंडेड फील्ड होगी सबसे पहले तो, पहली बार 48 टीमें जो हैं, 48 जो टीमें हैं, दे विल कम्पीट अप फ्रॉम 32 इन अ फॉर्मेट फीचरिंग 12 ग्रुप्स ऑफ फोर। इससे पहले हमेशा 32 टीमें होती थी, अभी 48 टीमें हैं। जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, देन ऑफकोर्स वो जंप हो गए हैं फ्रॉम 64 to 104, स्पैनिंग अ लेंथेंड 39 डे टूर्नामेंट। उसके बाद मेक्सिको सिटी का जो Estadio Azteca hai is making history as the first venue to host matches of the three different men's World Cup. Uske baad, char naye desh pehli baari World Cup khelne wale hain, jisme Cape Verde hai, Curacao hai, Jordan hai, and Uzbekistan hai. And entertainment value ke hisab se, jo FIFA hai, wo NFL Super Bowl style musical performance jaisi hoti hai na halftime pe, exactly kuch aisa hi hone wala hai. Probably it'll happen like later when we get into the quarters or the semis of the FIFA World Cup. But yes, a lot of excitement. Tomorrow is the first big match. We see South Africa playing again Mexico. Let's see which team gets this. All right, bane rahiye aap Big 106.2. Well, this was also magic, the music at its best. Dil se se gana, the track is Satrangi Re aapke saath. Until 5, this is The Big Life.

0: हमेशा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
4: Score! I guarantee 25 million dirham grand prize.
3: Plus, five more winners take home 1 million dirhams each.
4: And weekly cash prizes still to be won.
3: So, what are you waiting for?
4: Buy your ticket now at bigticket.ie.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2, The Beat of Bollywood.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill of Mansi. Almost midweek. We're getting into a long weekend. I'm sure you've made plans. Sometimes, you know, zindagi mein hum jitni bhi planning kar le, jo universe ki planning hoti hai na, woh अलग हटके डिफरेंट होती है. सो आई लिव बाय दिस फंडा के वट एवर हिज प्लान इज द बेस्ट प्लान. मतलब आजकल हम सबकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, तो बड़ी अच्छी एक बात है कि अगर मन का हो तो बहुत अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का है एंड वो आपके लिए बेस्ट चाहेंगे. सो वट एवर यू गोइंग थ्रू, आज इस ज्ञान के साथ शाम की शुरुआत करते हैं. ऑल सेट टू कीप यू कंपनी. आई वांट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9. वी गॉट सम फैंटास्टिक म्यूजिक, प्लस वी विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. व्हाइल यू स्टक इन ट्रैफिक, आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर to dial.

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
0: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
5: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money यूज करो।
4: क्या? सैलरी के लिए?
5: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
4: जैसे क्या?
5: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
4: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
5: बिल्कुल, E&Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: बर्फ क्या, मैं कह रही हूँ बंदे पिघल रहे हैं बाहर। इट इज 35 डिग्रीज, फील्स लाइक 44, लो जाएगा अराउंड 31, ह्यूमिडिटी फिलहाल 58% पर।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the bold flavor-packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: 40 मिनट का डिले एग्जैक्ट पर, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। दिस हैवी ट्रैफिक ने रेगा काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर, उदमेता, मनकुल करामा, साइड स्लो मूविंग, दिस ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद वर्का टू मर्डर फर्दर टुवर्ड्स मोहिसना। स्टैंड स्टिल सिचुएशन है उमरबुल के पास नियर राशिदिया, दुबई फेस्टिवल सिटी, ऑल्सो हेसा स्ट्रीट जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां भी 15 से 20 मिनट का डिले है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट, लेट मी नो 800-1062 पर।
0: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
5: अरे को है क्या?
6: काटेगी क्या?

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill right here on Big 106.2, a part of Fun Asia Network. We're playing the 5-second rule. मजेदार गेम में आपको मिलते हैं 5 सेकंड. कुछ कैटेगरीज में आपको देती हूँ, तीन चीजें बतानी होती है. हाँ, साउंड बहुत इजी करता है, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. We've got Zafar with us. Hi Zafar, good evening.
2: Hi, good evening Mansi, how are you?
1: I am good. इतने थके क्यों हैं? कहाँ सफर कर रहे हैं जफर साहब?
2: Just reached home, ma'am.
1: ती घर जाके इतनी थकावट क्यों हो गई है?
2: अभी तो कार पार्क किया था, आपका फोन लग गया तो बात हो रही है.
1: हाय, सो स्वीट. कैसा रहा आपका दिन?
2: एकदम वंडरफुल.
1: वंडरफुल, ऐसे ही रहे हमेशा, जिंदगी वंडरफुल ही रहनी चाहिए. फिलहाल क्या करते हैं आप जफर?
2: मैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ. तो बेसिकली मैं सिस्टम्स और नेटवर्क वगैरह देखता हूँ, सब मैनेज करता हूँ, इंस्टॉलेशन करता हूँ.
1: समझ मुझे कुछ नहीं आया, बट इम्पोर्टेंट काम है, सिस्टम वाला है. फिलहाल सफर विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
2: ठीक है मैम, तैयार है, कोशिश करता हूँ.
0: 5 सेकंड रूल. ओह यस.
1: क्विकली नेम 3 ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर मी.
2: कड़ी पत्ता.
1: टाइम खत्म हो गया. कड़ी पत्ता सब्जी थोड़ी ना है, कड़ी पत्ता, बट स्टिल आपने एक ही बताई. 3 करिश्मा कपूर की मूवीज.
2: हीरो नंबर 1.
1: और
2: दिल तो पागल है.
1: और टाइम खत्म हो गया. राजा बाबू. कितनी सारी यार, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, जुबैदा, लिस्ट गोज ऑन. 3 थिंग्स दैट यू फाइंड एट अ बीच. अरे. 3 लड़कियों के नाम जो एस से शुरू होते हैं.
2: शाजिया, सुमैला.
1: कौन है शाजिया, सुमैला, सुमैया? जो फटाफट बता दी, और कोई तो जवाब आपने दिया नहीं.
2: माय वाइफ. अच्छा, ओनली वन.
1: इनमें से वाइफ कौन सी है?
2: फर्स्ट वन.
1: शाजिया. तो सुमैला और सुमैया कौन है?
2: सुमैला
1: इज योर कॉलीग. आपको इसकी थ्योरी पता है ना, जो 3 नाम आते हैं वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं.
2: सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है.
1: आप तो फंस गए हो.
2: इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ के साथ मेरी वेरी मच ट्रांसपेरेंसी इज देयर, सो शी विल नॉट डाउट.
1: देखो, दुनिया का एक दस्तूर है, आदमी वो नहीं है जो वो दिखाता है, आदमी वो है जो छुपाता है. फिलहाल 3 पिज्जा टॉपिंग्स.
2: 3 पिज्जा टॉपिंग्स.
1: अरे रे रे रे, एक ही जवाब दिया. लड़कियों के नाम तो जफर ने ना 3 सेकंड के अंदर दे दिए, उसके बाद एक भी जवाब नहीं दिया है.
0: 5 सेकंड रूल. ओह यस.
1: बहुत खराब खेला जफर साहब आपने, बट बड़ा मजा आया. मतलब ये सुमैला, शाजिया और सुमैया
2: एस के साथ जुड़े
1: हो. एस के साथ जुड़े हो. देखो, अब मुझे भी कहाँ से ख्याल आया एस का, मैं कोई और लेटर भी बोल सकती थी.
2: जी जी जी जी. देखो, लकीली माय वाइफ नेम इज द फर्स्ट नेम.
1: थैंक गॉड फॉर इट. अगर वो कौन है कॉलीग आपकी? सुमैला.
2: सुमैला
1: का नाम पहले आ जाता जफर साहब, तो आज आपको खाना नहीं मिलता. चलिए, एंजॉय योर इवनिंग एंड थैंक यू सो मच. मजा आया? नहीं आया?
2: बहुत एंजॉय किया मैडम आपसे बात करके.
1: थैंक यू सो मच सर, बाय. यही है 5 सेकंड रूल. आपने खेलना, एक ही रूल है, कॉल करना है 800-1062 पर.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insuremarket.ie.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: स्लो मूविंग ट्रैफिक इस वक्त अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं वर्का से मर्डे आगे मुहिसना फिलहाल 39 to 40 मिनट डिले। शेख जायद की बात करते हैं, मैंने कहा था ना कि ये बस शुरुआत है, आगे देखो 1 घंटा 10 मिनट का डिले। इट्स पैक्ड फेस्टिवल सिटी नादलहम और उमरमूल अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 4 हेस स्ट्रीट इफ यू गोइंग टुवर्ड्स जेवीसी जेवीटी ऑल द वे टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी आपको ट्रैफिक मिलेगा। मरीना डू जेबीआर इज पैक्ड, देयर इज हेवी ट्रैफिक नियर सतुआ एंड नियर रेगा एज वेल। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट करना है बताइए 800-1062 पर।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
3: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
4: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अभी यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hi, इतना मजा आ रहा है मुझे ये खबर सुन के, क्योंकि बहुत दिनों से काफी ज्ञानी पुराने ड्राइवर्स जो मेरे आसपास हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। 60 की रोड पे 60 पे कौन चलाता है, अरे ये कौन करता है, वो कौन करता है। आपके लिए ताजा ताजा खबर ये है कि दुबई हैज रोल्ड आउट एडवांस साइलेंट एंड AI पावर्ड हिडन ट्रैफिक कैमराज अक्रॉस द एमिरेट टू ऑटोमेटिकली ट्रैक डेंजरस ड्राइविंग बिहेवियर्स अनलाइक ट्रेडिशनल फ्लैशिंग रडार्स। इस पे आपको फ्लैश नहीं दिखाई देगा, बट इसकी नजर आप पर हमेशा रहेगी। द कैमराज आर टिपिकली हाउस्ड इन स्लीक ग्रे एंड ब्लैक स्ट्राइप पोल्स और आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्गाइज्ड यूनिट्स हैं बिग बॉस की तरह, इनकी नजरें हमेशा आप पर रहेंगी। तो अगर आप फोन यूज कर रहे हैं व्हाइल यू आर ड्राइविंग, सिर्फ 800 दिरहम का फाइन, यस, और 4 ब्लैक पॉइंट्स। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, 400 दिरहम का फाइन, 4 ब्लैक पॉइंट्स। एंड ऑफ कोर्स दिस मॉनिटर्स बोथ ड्राइवर्स एंड द पैसेंजर्स बैड लेन डिसिप्लिन। इसके लिए तो 100% पुराने ड्राइवर्स को फाइन लगना चाहिए, क्योंकि हम जो फ्रेश आउट ऑफ स्कूल आते हैं ना, हम टू द टी रूल्स फॉलो करते हैं। बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो अब इसका भी फाइन है 400 दिरहम का फॉर टेलगेटिंग, क्रॉसिंग सॉलिड लाइंस एंड सडन लेन चेंज करना, जंपिंग रेड लाइट्स 1000 दिरहम का फाइन, 12 ब्लैक पॉइंट्स, 30 दिन के लिए आपका व्हीकल भी इंपाउंड हो सकता है, एक्सट्रीम स्पीडिंग अप टू 3000 दिरहम का फाइन, 23 ब्लैक पॉइंट्स और 60 डेज के लिए व्हीकल इंपाउंडमेंट। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई है तो 500 का फाइन है, 4 ब्लैक पॉइंट्स है, 7 दिन व्हीकल जो है इंपाउंड रहेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, जितने भी ये ज्ञानी लोग मेरे आसपास थे ना, जो कह रहे थे कि हैं ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, करते रहो तुम्हें जो करना है, मैं 100% रूल्स फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे 800 दिरहम बहुत प्यारे हैं।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill. I'm Mansi right here on Big 106.2 about a Funnation Network. Agar aapki bandi, that is your girlfriend, your wife, aapse bole ke यार कुछ पहनने के लिए नहीं है, आई डोंट हैव इनफ क्लोथ्स, तो आप क्या ज्ञान देते हैं? क्या अलमारी भरी हुई है, कपड़े गिर रहे हैं? ऐसा नहीं करना है. दिल्ली का एक बंदा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एकदम हाई. उसने एक महीने के मतलब 30 अलग अलग आउटफिट्स गर्लफ्रेंड को भेजे जब उसने कहा कि मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है. मोर ऑन द स्टोरी व्हेन आई कम बैक. वैसे पहनने से याद आया, आज जब मैं लिफ्ट में आ रही थी ऑफिस, बहुत सालों बाद किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया. किसी ने मुझसे कहा कि यू नो वॉट, एन अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, your look today reminds me of Namrata Shirodkar from this song that I'm playing for you right now. And usne kaha, aapne kabhi notice kara hai ki aap Namrata Shirodkar jaisi lagti hain? हाँ, अगर वो delusional है तो उसे रहने दो, मेरे लिए ये compliment ही काफी है. आज मैं अपने Namrata Shirodkar from Ojana era में हूँ फिलहाल.

0: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Missed your morning buzz? Yes or no?
3: अजिंक्य गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग सर.
3: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले. आपका दिन कैसा रहता है?
4: नॉट लाइक मच चैलेंजिंग, बट थिंग इज व्हाट वी आर डूइंग द क्वालिटी चेक फॉर द मेडिसिन व्हाट वी आर टेकिंग. तो जो दवाई हम लोग खाते हैं उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्योरिटी चेक करना, ये हमारा प्रोफाइल रहता है.
3: ओह वाओ यार. So nothing to do with a virus or bacteria or something. मेरे को लगा कि usually ये germs इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, ये इंसान इन germs के पीछे दौड़ता है. virus मैं तुम्हें खा जाऊंगा.
4: Company का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है.
3: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो भाई हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊँ आपको. आप इसी काम के लिए आए हो. तो आप कंपनीज की हवा पानी चेक करते हो. ये अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार. आई मीन इट्स
4: एग्जैक्टली
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
7: 34 degrees feels like 43. Low jayega around 31. Filhal pretty humid. 65% pe humidity.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill, Nancy, and there's this story that is going viral. अब ये हम लड़कियां करती हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है ही कि हमारे पास कभी भी कपड़े होते नहीं है, इनफ कपड़े नहीं होते हैं, एंड अक्सर वी कंप्लेन टू आर बॉयफ्रेंड्स, टू आर हस्बैंड्स के यार कुछ पहनने के लिए नहीं है. 90% बंदे सामने से रिप्लाई करते हैं, अलमारी भरी हुई है, कपड़े गिर रहे हैं, रखने की जगह नहीं है, अभी तो पार्सल आया था, अभी भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं है. इस बंदे जैसे बनो. इस बंदे ने साल भर के आउटफिट्स अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए व्हेन शी सेड कि आई हैव नथिंग टू वेयर बेबी, मैं क्या करूं. कहाँ मिलते हैं ऐसे बॉयफ्रेंड, कहाँ मिलते हैं ऐसे बंदे, कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है यार, कहाँ एप्लीकेशन लगाऊं. एक तरफ एक बंदा है जो 370 रुपए की बिरयानी की वसूली की बात कर रहा है, आई डोंट वांट टू गेट देयर बिकॉज इट मेक्स मी वेरी वेरी एंग्री, एंड दूसरी तरफ ये है 365 दिन के कपड़े गिफ्ट कर दिए जस्ट बिकॉज द गर्ल सेड यू नो आई हैव नथिंग टू वेयर. आई थिंक दो तरीके के बंदे होते हैं इस दुनिया में, एक वो 370 की बिरयानी वाला जिसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है, एंड दूसरा ऐसा. आप दूसरे वाले बनो. नेक्स्ट टाइम योर वाइफ योर गर्लफ्रेंड कंप्लेन्स आई एम

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill of Nancy, and we were talking about green flags. Good men do exist. I was just talking about this boyfriend, jaise hi bandi ne complain kari ki I have nothing to wear. 365 din ke, 365 days ke outfit gift kar diye. Aisa hi ek green flag is movie mein bhi tha. Well, the movie was released back in 2003 in the month of June, 13th of June to be honest, but 13th is a weekend and I thought it is such a classic movie, might as well celebrate the movie today. Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, badi controversy hui thi. Aishwarya was a part of this movie, but because of certain issues, she had to step out and then Rani stepped in. Beautiful music, a very, very cute rom-com. Let me see how many of you remember the movie.
2: Oh, cute! Hmm. You finally got the cast.
3: Of course.
2: Sach?
3: Jhoot.
2: तो ये कैसे मिला?
3: वो अंकल ने मुझे दे दिया.
2: ऐसे ही दे दिया?
3: अरे ऐसे ही नहीं दिया, उन्होंने देखा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, ये देख कर दिया. लेकिन अफसोस.
2: क्या हुआ?
3: एक दूर दराज का परदेसी मेरे दिल की बात समझ सकता है, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो ही नहीं समझता. प्रिया, मैंने भी डिसाइड कर लिया.
2: क्या?
1: अगर आपने गेस कर लिया ये कौन सी मूवी है, राज प्रिया. ब्यूटीफुल म्यूजिक. 801062 इज द नंबर टू डायल. योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स राइट हियर. मैं हूं नांसी, दिस इज द बिग थ्रिल, टेकिंग यू टू अरिजीत सिंह की आवाज़.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यूरी, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: फॉर्म पति पत्नी और वो दो
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एक से भले दो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है फिलहाल। अगर आप काफी टाइम से सोच रहे हैं टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, दिस इज इट। अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस। ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज। अब आप ये कर सकते हैं विदाउट एनी डिले विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 dirhams टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस। ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया, बाकी दे विल टेक केयर ऑफ योर वीजा, योर बैंक रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही क्विक, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है पूरा प्रोसेस। TNCs do apply to get your one click license. Any other information that you need, abhi visit kijiye afz.ae. Filhal, we're getting into a long weekend and yahan pe I'm giving you a chance to win open movie tickets. Itne galat jawab aaye na, maine ek dialogue aapko sunaya tha, Shahrukh Khan Rani Mukherjee ki rom-com hai, Aziz Mirza ki movie hai, brilliant music tha. Let me see ise sunne ke baad kitno ko movie yaad aati hai. राज और प्रिया की कहानी। प्रिया की शादी किसी और से होने वाली होती है, बट राज फॉल्स इन लव विद प्रिया एंड सो डज प्रिया। फिर वो शादी करते हैं एंड शादी के बाद असली जिंदगी जो शुरू होती है ना, वो है ये कहानी। अगर आपको याद आ गया है देन 800-1062 इज द नंबर डायल। अगर आपने मूवी का नाम गेस कर लिया है, दिस इज योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक।
1: बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi, and we're talking about this man जिसने अपनी girlfriend को साल भर के कपड़े gift कर दिए क्योंकि उसने कहा कि I have nothing to wear. Right now I have Mr. Zahid. Hi Zahid, good evening.
3: Good evening, Mansi. How are you?
2: I'm good. So Zahid, I was talking about this boy जब girlfriend ने कहा कि यार कुछ कपड़े ही नहीं है, I don't have anything to wear, which is a standard statement. We all say that. तो बंदे ने साल भर के कपड़े गिफ्ट कर दिए अपनी गर्लफ्रेंड को. जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बोलती है ऐसा कुछ तो आप क्या करते हैं जाहिद?
3: सो वेरी रिसेंटली माय वाइफ टोल्ड मी कि शी डज नॉट हैव इनफ ट्राउजर्स. आई वेंट टू अ शॉप, बॉट एग्जैक्ट सेम ट्राउजर इन 5 डिफरेंट कलर्स एंड आई वाज लाइक प्लीज नथिंग फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, दीज आर द 5 ट्राउजर्स.
2: वेरी नाइस, मतलब सच मेन डू एग्जिस्ट और वो भी बीवी के लिए. वाह यार,
3: एंड इट हैपेंड ओनली 2 डेज बैक.
2: बीवी इज देयर विद यू? हाय, यू आर वेरी लकी. टचवुड, मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये AI जनरेटेड स्टोरी है, ऐसे बंदे होते नहीं है. आपके बंदे ने तो कह दिया यार, मतलब पांचों के पांचों कलर में ट्राउजर ले दिए.
4: And he did it like 2 days back when we were traveling. So
2: amazing. कहाँ से डाउनलोड किया है ये जाहिद को आपने? मुझे भी चाहिए. इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जरा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो एक कलर के ट्राउजर की जगह 5 कलर के ट्राउजर ले देते हैं?
3: We used to work together. I was her manager.
2: Oh, office romance. Very very nice. I'm very impressed. Very yes, nice.
3: Actually, there was no romance in the office. I took outside the office. I took romance outside the office.
2: Of course, the HR is always there. बट यार मैं बहुत इंप्रेस हूँ कि जाहिद, मुझे लगता था यार ऐसे बंदे कहाँ मिलते हैं, वरना 90% लड़के यही कहते हैं ना, इतने सारे कपड़े अलमारी से गिर रहे हैं, तुम्हें और क्यों चाहिए. बी लाइक जाहिद गाइस, अगर बीवी बोले कि मेरे पास एक ट्राउजर नहीं है तो यस, मैं बहुत इंप्रेस हूँ. मुझे नींद ही नहीं आएगी, मैं जाहिद के सपने देखूंगी, मतलब मैं अपना जाहिद मैनिफेस्ट करूंगी. ठीक है, मैं प्लीज लेट मी बी क्लियर, मैं अपना जाहिद मैनिफेस्ट करूंगी. थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
3: यू टू, हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Chill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the Bold Flavor-Packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
5: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: यू नो वीव डन दिस इन यू नो आवर लाइफ एट सम पॉइंट, हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे। अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे, यू नो चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम, 50 दिरहम जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था। तीन लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल। हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे। इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाले कहते हैं नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख। उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000, और तीन क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 10 a.m. to 2 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: सॉलिड ट्रैफिक है बॉस, शेखजाद रोड पे 1 घंटा 20 मिनट स्टिल। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, इफ यू स्टक शेखजाद पर All I can do is I can play you a nice song. अगर आप शेखजाद में फंसे हुए हैं कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे कॉल करो 800-1062 पर। दिस ट्रैफिक नियर दुबई क्रीक हार्बर, ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो एट द मोमेंट इफ यू आर अराउंड करामा मनकूल उदमेता साइड। इसके अलावा आपको ट्रैफिक मिलने वाला है फेस्टिवल सिटी के आसपास भी, एंड देर इज ट्रैफिक नियर मोटर सिटी। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट लेट मी नो 800-1062 पर।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Good evening. That was the fast track song of the hour, and yahan par the last 5 minutes for you to guess. Abhi tak kafi galat jawab aaye hain. Sawal bada simple hai. Agar aap open movie tickets jeetna chahte hain, then you have to tell me ki ye jo gana hai. ये शाहरुख खान रानी मुखर्जी की कौन सी मूवी से था जो रिलीज हुई थी बैक इन 2003 इन द मंथ ऑफ जून. अजीज मिर्जा की मूवी है. इट्स अ रोमांटिक ड्रामा अबाउट राज एंड प्रिया. ब्यूटीफुल स्टोरी. इफ यू रिमेंबर द मॉडल जस अरोरा, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवी. आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ हिंट्स. अगर आपने गेस कर लिया है, 800-1062 इज द नंबर टू डायल योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स कर्सी ऑफ वॉक्स सिनेमास राइट हियर ऑन पिक 106.2 अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. And if you want to watch a fun movie over the long weekend, then go and watch Hai Jawani To Ishq Hona. It is entertaining like how.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: You know, मुझे UAE में ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं एंड मैं हर साल प्लान करती हूँ कि मुझे अबू धाबी जाना है. आई वांट टू गो टू द वॉर्नर ब्रोज वर्ल्ड, बट मैं आज तक नहीं गई हूँ. आई वाज जस्ट रीडिंग दैट अबू धाबीज वॉर्नर ब्रोज वर्ल्ड हैज जस्ट मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट मिडल ईस्ट थीम पार्क टू विन एक ग्लोबल

0: नमस्ते,
1: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
0: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।

0: बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 34 degrees outside, feels like 41 and humidity filhal hai 58%, par aaj lo jayega around 31.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: You know, लोगों ने एक बार भी पूरा नहीं देखा, मैंने देसी ब्लिंग दो बार देख लिया है. Not for anything else, but for the flamboyance, for the wealth, for the style. I know, हम देसियों का ये तरीका होता है कि यार अगर है तो दिखाओ, नहीं नजर लग जाती है. बट इन्होंने वो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर मुझे देसी ब्लिंग में आना है तो बॉस अपना बिजनेस तो शुरू करना पड़ेगा. बिजनेस होगा फिर आई कैन ऑल्सो फ्लेक्स जस्ट लाइक ऑल दोज very very rich and amir people that I saw on the show. And hamare aas paas hi hain. Ab ye 9 to 5 se to nahi ho payega, to agar aap bhi meri tarah desi bling mein aana chahte hain, on a serious note, agar aap apna business shuru karna chahte hain, then just get in touch with Ajman Frieson Authority. They've introduced the one click business license. Great news for all those who wish to open their small or medium sized enterprise with a fee starting from 5555 dirhams to get your business license. Aapko sirf ek business idea ki zarurat hai, baki Ajman Frieson Authority will take care of the rest, including your visa and your bank requirements. Bahut hi quick, completely digitized hai pura process. TNCs do apply. So to apply for your one-click license, any other information, visit kijiye afz.ae. And show ki baat side mein, jitne bhi businessmen, jitne bhi casting hai Desi Bling ki, सबने बहुत छोटे लेवल से शुरू कराया है विद 4,000, 3,000, 800 kind of dirhams. So I think शुरुआत करना बहुत जरूरी है from a very small business to grow where they are if we look at their growth, their success, and that starts with one SME. And if you're planning to do that, मैंने ऑलरेडी बता दीजिए है कि आप विजिट कर सकते हैं afz.ae. फिलहाल आई एम गोना टेक यू टू 2000s, अर्ली 2000s. मूवी टैंक्ड मिजरेबली एट द बॉक्स ऑफिस, बट स्टिल आज तक ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है. मतलब इतनी अच्छी लगती है मुझे मूवी कि मैंने कम से कम 20 बार ये देखी होगी. एक मैं प्रेम की दीवानी, दूसरी है

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: पिलाने पिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM to 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट .ae Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: से पानी मत होश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड नो रश नो नॉइस जस्ट Soul soothing music on a moonlit ride. This is the Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.